जजो नेपालले चाहिँ नचना दिलो आ जजो सदकले नपाङको बुख दिएदिन थो चाहिँ वङ शनिबार मख या नपाई शनिबार त बाय बुख ख नेपाल भाषा रचना पाठ दिने बल्ला का सम्पन्न जुगुदो नवदृष्टि समाज नेपाल गोसाले यी महानगरपालिका 22 वडा या गोहाली जुगु नेपाल भाषा रचना पाठ दिने बल्ला का कोचागुदो नेवा गैर निवासक स्यान नेपाल भाषा या रचना पाठ या त अपिमा दैगु तातुना शनिबार वा आइतबार न्यून यङ्क जुगु थो कासा शनिबार थिथि बने कुथिया न्यागु निसे च्यागु तगिया सच्छि व स्विम बनामे पिन्सम बोतिकागु ख शनिबार यागु बासन्य लिदसा लेज्या पुसल उत्कृष्ट निम बनामे पिन्त धेदे बल्ला कासा दुथ्यागु ख गोसा खल समाज या नय मिरा महर्जनिया अध्यक्षता जुगु रचना पाठ ज्याजोले पाठ्य नीति न्यागु व खुगु तगिया त योमरी विषय बिगु खसा नेगु व च्यागु तगिया नीति यया इन्द्र जात्रा विषय बिगु ख नेपाल भाषा केन्द्रीय विभागीय पूर्व प्रमुख सह प्राध्यापक डाक्टर राजन लाल श्रेष्ठ मु निर्णायक जुयादिगु लेजिया पुछले रविन श्रेष्ठ शकुन्तला महर्जन व अस्मित मल्लपी दुसा कथा चुनादिगु ख उहु लेजिया पुछल विश्वनिकेतन माध्यमिक विद्यालय न्यागु तगिया स्टेफन पोखरेल नाप शान्ति निकुञ्ज माभि खुगु तगिया लुजला श्रेष्ठ लिउ व सर्वज्ञ शिव बाबा विद्यालय न्यागु तगिया आराध्य थापा लियालिउ लियागु ख अथे श्री रत्नराज्य माभि च्यागु तगिया प्रकृति खड्का नाप विश्वनिकेतन माभि च्यागु तगिया सुप्रिया थापा लिउ व जनजागृति ज्ञान रश्मि या च्यागु तगिया करिना तामाङ लियालिउ लियागु ख नाप लिउ व लियालिउ लापी कासामी पिन्त म पहा नेपाल भाषा एकाडेमिया चान्सलर मल्ल के सुन्दर व विशेष महापी 22 वडाया नाया चिनी काजी महर्जन व मेहालामी रोजमान महर्जन पिन्स दसी पौ व छसी कथ खुद पेद व निस तका शिर्पा लल हा गु खसा सेलेक्टेड जु पिन्त मति झिन्यास तका हपा शेर्पा कथन ललहागु ख थुज्यागु ज्याजोल नेपाल भाषा लिङ्केको ज्याजोगु ख मु पहा मल्लके सुन्दर अध्याय दिलसा वडा अध्यक्ष चिनी काजी महर्जन शिक्षा सेकेगु सेकेगु व भीमा मनु देखेगु ख करा दिल विनिता तुलाधर सुब्या नोचु तया दिगु ज्याजोले पहा कथ 22 वडा या दुजपी अनिल हाडा चन्द्रमान तुलाधर ललिता खड्गी व दिपा परियारपी झाया दिगु ख तस्मा हे बालागु ज्याजोरका अध्यायमा छर्का दाइबले नेपाल भाषा बुङ्के गुला सूर्या त तर धाथे अन बनामी पिस नेपाल भाषा थुगु ख कि मखुले बनी सगु ख कि मखु रखा सिके त चाहिँ सजागु ज्याजोल योको योको हे गुहालीजी अले आ थो हे क्रम ह्याना तु चोनिमा विशेष सेना थो आ ये महानगरपालिका त जक च्यागु त गीतक त गुजुल यले खलायो कसा न्यागु त गीतक थिएन तर गुन दको स्कुले मखुनी अन चाहिँ सामुदायिक स्कुले जक सरकारी स्कुले जक दु प्राइभेट स्कुले मखुनी अनि मिमेगु थासेन अब अठेख खिप्लिन अठेख सरकारी स्कुले जक त गुदु सुङ्गु त गीतक प्राइभेट स्कुले त फुगु अवस्था मधुनी एजा दजै सुन लगे जुगा दाइ बेथजागु ज्याखजीले विशेषना चाहिँ स्थानीय सरकार छगु भ्या स्थानीय विषय तका चाहिँ बुङ्केगु रका चाहिँ दु अलि वो स्थानीय विषय चाहिँ नेपाल भाषा पठन पाठन याकेगु ख निसा वो पठन पाठन याके भले सूर्य दक्कु स्कुले रका जुन गठे ये महानगरपालिका लागु या त अथे या सक दौठाइ या फि अलि तहगत रूपमा घुम्ने चाहिँ पहिला चाहिँ सरकारी या मलाई 3 क्लास त या अलि बिस्तारो बढे या वा एनआइएन चुल्के चाहिँ बच्चा अलमल जिफु खानिका यहाँसँग त सबै बालागु ज्याजो जुगु दुटके लागि 22 वडा यो गुहाली जुगु जुल नि 22 वडा या त ये महानगरपालिका 22 वडा वडा अध्यक्ष नाप 22 वडा समिति या त यो कोही कसुबा दासै ज्याजो साख्न मेरो सपन मिस्वा